हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे कभी इधर भागे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान

बिल्कुल गुलशन महका महका लगता है. यस, इट वॉज अ ट्रिब्यूट टू नुसरत फतेह अली खान साहब. और हमारे बाबू गोरा साहब अशरफी ने बड़ी एक बड़ी अच्छी शहर भेजी है कि शहर दरबन में है दोनों, शहर दरबन में है दोनों, एक है बादशाह एक है सूफी. रोजा उनके गुम्बद खजरा का ये जलवा लगता है. शहर दरबन में है दोनों, एक ही बादशाह एक है सूफी. रोजा उनका गुम्बद खजरा का ये जलवा लगता है. शुक्रिया अब्दुल्ला मुनाफ साहब ऑफ बोत्सवाना, आवर इंटरनेशनल मैन यासीन लतीफ पीटरमैरिसबर्ग, नजीर खान शेस्वत के रहने वाले हैं, एंड ऑफकोर्स तालिब और कुक मैन फ्रॉम पीटरमैरिसबर्ग. आइए अब मदीनत रसूल से होकर हम नजफ की तरफ चलते हैं, हजरत अली करमल्लाह वजल करीम की बेकसपना में, और वहां तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं मकामी कव्वाल हजरात खालिद नवाज और उनके हमनवा.

दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से चाहे जिसकी

0: सारी मॉडल पुराना लगता है।
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है।